0: मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: और कल्पना, तुम्हें भी और हमारे सभी सुनने वालों को मेरा यानी रश्मि कुकृति का प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल। और श्रोताओं, हमारे साथ आप जुड़े रहिए पूरे एक बजे तक FM गोल्ड यानी 100.1 MHz पर, साथ ही आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर भी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने कार्यक्रम में रोज आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का हमारा प्रश्न है, परिवार के साथ सबसे अच्छी याद आपकी कौन सी है? जो भी आपको याद आए आप फटाफट से हमें ईमेल करके बताएं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। fmgoldga@gmail.com हमारा ईमेल है, तो आप हमें मेल कीजिए।
1: जी बिल्कुल, fmgoldga@gmail.com पर अपनी मेल भेजिए और आपकी मेल की प्रतीक्षा तो हम कर रहे हैं। और इस बीच मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कल्पना। वो ये आ रहा है कि अक्सर जो है वो दूरियों को लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं भाई कोसते हैं कि भाई दूर हो गए। लेकिन किसी ने कहा है कि दूरियां सिर्फ फासलों का नाम नहीं है, ये तो अक्सर रिश्तों में गहराई और यादों को खूबसूरत बनाने का काम भी करती है। क्योंकि जो दूर रहते हैं ना, तो तभी हमें समझ में आता है कि भाई कोई कितना जरूरी है ना।
0: बिल्कुल, प्यार का एहसास तभी होता है जब कोई हमसे दूर जाता है।

0: अभी आप एक खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे अदालत फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने।
1: और कल्पना, हमारे पास जो तुमने एक प्रश्न पूछा था उसका एक थोड़ा सा जवाब आ गया है।
0: अरे वाह, क्या जवाब है, पढ़ के बताइए
1: भाई।
0: ये प्रदीप खंडेलवाल जी है और ये लिखते हैं कि वैसे तो परिवार के साथ बिताया हुआ हर पल बहुत ही सुंदर होता है, और हम सब परिवार वाले जब पोती के साथ खेलते हैं तो वो पल सबसे सुंदर पल होता है।
1: जी बिल्कुल, परिवार के साथ बिताए गए पल तो वाकई सबसे खूबसूरत पल होते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे जो अन्य श्रोता हैं वो भी हमें ईमेल करके बताते रहें कि वही उनका सबसे खूबसूरत जो पल है अपने परिवार के साथ वो कौन सा था। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और हर दिन की अपनी एक कहानी होती है। इसी क्रम में आज का जो दिन है वो खास है, क्योंकि आज है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, जो प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाई जाती है। वे एक महान शिक्षाविद, राष्ट्रवादी चिंतक, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री तथा भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, तो उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें सादर श्रद्धांजलि भी देते हैं।
1: और साथ ही प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है, और ये दिन उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो लोगों की सेवा और देश के विकास के लिए काम करते हैं। भारत में भी इस अवसर पर कई सरकारी संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और कल्पना, इस दिन का संदेश यही है कि ईमानदारी, समर्पण और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था से लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है, यानी एक ऐसे समाज का निर्माण जहाँ पर हर तरफ बस हंसते मुस्कुराते और खुश लोग हों, है ना।

0: दोस्तों अभी आप ये खूबसूरत सा गीत जो सुन रहे थे इसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने, फिल्म का नाम कारवां।
1: हाँ, और देखो कल्पना, तुमने एक प्रश्न पूछा था परिवार के साथ बिताया गया सबसे खूबसूरत पल, और एक और मेल आ गई है हमारे पास।
0: हमारे श्रोता जुड़े हुए
1: असम दुलिया जान से है सुरजीत मांजलैया सिंह, और बड़ा खूबसूरत इनका संदेश है। वो कहते हैं कि दिसंबर 2018 में जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो वो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, और उस समय रूढ़ीवादी परंपराओं को दरकिनार कर मैंने अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर पूरे समाज को एक भव्य भोज दिया।
0: क्या कहने
1: जी, आमतौर पर ऐसी खुशियां और बड़े आयोजन सिर्फ बेटों के जन्म पर ही करने की रूढ़ीवादी रीत है, लेकिन बेटी के लिए ऐसा करना परंपरा के विरोध जैसा था। लेकिन अपनों के बीच उस खुशी को मनाकर और पुरानी सोच को बदलकर जो सुकून मिला वो हमारे पूरे परिवार के लिए हमेशा के लिए सबसे अनमोल और गर्व से भरा पल बन गया। वाह, क्या बात है,
0: ये
1: है ना?
0: तो सुरजीत जी ने एक उदाहरण दे दिया लोगों की, वो इससे प्रेरणा ले सकते हैं इस बात से भी कि भाई अगर बेटियां होती हैं तो उनके जन्म पर भी कुछ ना कुछ ऐसा उत्सव करें जो चार लोग उससे भी सीखें, जैसे हम इससे
1: बिल्कुल, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे जो कार्यक्रम घर आंगन का भी यही ध्येय है, महिलाओं की बेटियों की जो है वो मजबूत और सशक्त बेटियां बने, तभी तो हमारा समाज भी मजबूत बनेगा और देश भी मजबूत बनेगा, है ना कल्पना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि भाई किसी ने क्या खूबसूरत सा शेर कहा है। मुझे याद आता है कि जहाँ लफ्जों के मायने खो जाते हैं वहाँ से संगीत के सुर शुरू हो जाते हैं।
1: वाह भाई वाह।
0: तो दोस्तों, बस कहने का मतलब ये है कि संगीत जो है वो एक ऐसी थेरेपी है जहाँ विज्ञान और शास्त्र दोनों इसका समर्थन करते हैं।
1: जी, हम भी समर्थन करते हैं और WHO भी समर्थन करता है कि भाई वो तो कहता है कि इतना अध्ययन किया गया है जिसमें कि ये पाया गया है कि जिस संगीत सहित कलात्मक गतिविधियों को स्वास्थ्य और मानसिक सुख समृद्धि के लिए सहायक पाया गया है। संगीत सुनते ही वो कहते हैं कि शरीर से जो तनाव से जुड़ा हुआ हर हार्मोन होता है ना वो कम हो जाता है और मन शांत होने लगता है कल्पना। अच्छा। और तुम ये पाओगी कि रक्तचाप और हृदय गति भी सामान्य हो जाती है, यानी कि जो खुशी और प्रेरणा से जुड़े हुए जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं ना शरीर में वो सक्रिय हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और जो नींद होती है ना वो भी सुधर जाती है।
0: ये तो है, कभी भी हम कोई संगीत सुनने लगते हैं तो अचानक से हमारा मन उससे ही कनेक्ट हो जाता है।
1: जी बिल्कुल,
0: कितनी बार अगर हमने तेज संगीत सुना दिया तो पैर थिरकने लगते हैं, कभी हम लो सुनने लगते हैं तो उससे हमारा मन भी थोड़ा शांत

0: होने लगता है, लेकिन ये सभी फायदे तब होते हैं जब सही समय पर और सही तरीके से संगीत सुना जाए।
1: और एफएम गोल्ड से या इंद्रप्रस्थ से संगीत सुना जाए तो भाई उसकी बात ही क्या, रेडियो के संगीत की बात ही क्या, पुराने गाने मीठे गाने है ना।
0: बिल्कुल सही बात है। तो आइए इसी बात पर हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: जी

तो ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी सूरत तेरी आंखें से, और जिसे गाया मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। तो ऐसे ही गीत सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: और हमारे श्रोता हमें निरंतर ईमेल कर रहे हैं और एक बार अपना प्रश्न फिर से बता देते हैं कि भाई परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है। हमें लिख भेजिए, हमारी ईमेल आईडी है smgoldga@gmail.com पर जल्दी जल्दी भेज दीजिए, हम आपके जो उत्तर है उन्हें अपने कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना उत्तर हमें कि परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है।
1: और कल्पना, एक और संदेश आ गया है मेरे पास, ये लिख रही है भारती दिल्ली से। वो कह रही है कि परिवार के साथ बिताए गए पलों में सबसे खूबसूरत याद मेरे माँ की जन्मदिन की है। जब मेरी मदर 50 साल की हुई तो हमने सारी तैयारियां चुपके चुपके कर ली और केक मंगवाया। जैसे ही माँ कमरे में आई, हम सब ने मिलकर उन्हें दिया सरप्राइज। सच बताऊं, उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान देखकर लगा, अरे वाह, ये पल तो सबसे अनमोल है। और आज भी उस दिन को याद करके हमारा मन खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल, और मैं सच बताऊं, आप जब ऐसे SMS जो भेज रहे हैं संदेश, इनको पढ़ के तो मेरा भी मन इतना खुश हो रहा है
1: जी, अपनी माँ की याद आ रही है।
0: दूसरे जब इतनी खुशी लिख रहे हैं, उनके जो वाइब्स हैं वो अपने अंदर भी महसूस कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठे हुए। तो आप सब अपने जो उत्तर है वो हमें लिखते रहें, भेजते रहें। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक जानकारी है आपके लिए बहुत अच्छी कि एक शेर है, उससे शुरुआत करना चाहूंगी कि जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी ताकत पर भरोसा रखते हुए दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के पहले महिला पुलिस थाने की शुरुआत की गई है। 19 जून 2026 से महिलाओं को और बच्चों को बेहतर सुरक्षा देने हेतु पुलिस उपस्थिति द्वारा जल्दी, जिसको कहते हैं ना कई बार देरी

0: अभी ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और अब हम अपने श्रोताओं के एक बार ईमेल और देख लेते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा है।
1: जी बिल्कुल, राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, गांव चौधरी, फसल हिसारकर से ये

0: और कल्पना जी एफएम गोल रोजाना सुनता हूँ और अपने परिवार में हंसी मजाक के साथ रहते हैं और रेडियो का बहुत बड़ा परिवार मेरे साथ है।
1: बिल्कुल, और एक ईमेल और आया है हमारे पास वैशाली रहेजा जी का। ये लिखती हैं कि वैसे तो परिवार के साथ बिताया हर लम्हा खास होता है, लेकिन हमारे मनाली की वो ट्रैवलर ट्रिप सबसे यादगार थी। सासू माँ का साथ, दोनों ननद की मस्ती, बच्चों का हुड़दंग और ऊपर से हमारे मजाकिया जीजू की वो मजेदार कॉमेडी, सबने मिलकर पूरे रास्ते फुल एंजॉय किया।
0: अच्छा,
1: रास्ते पर हंसी मजाक और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के बीच हमें एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मजा और सुकून सिर्फ अपनी हंसती खेलती फैमिली के साथ में ही है। और एक बात और दोस्तों कहना चाहूंगी कि भाई कई बार लोग बोलते हैं भाई मैं ससुराल वालों के साथ घूमने में मजा नहीं आता, वैशाली जी आपने ये बात लिख के सच में बहुत सारे लोगों का भ्रम तोड़ा है। हमें भी ससुराल वालों के साथ रहने में बहुत मजा आता है, कहीं घूमने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है
0: और परिवार के साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और वो कह रहे हैं कि हम लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति और अनमोल बातें, और साथ में कह रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं, कह रहे हैं कि परिवार वो सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर हर कोई शांति महसूस करता है। बढ़िया संदेश।
1: और नवीन भाटिया जी भी लिखते हैं कि परिवार के साथ सबसे सुंदर पल हमने अपने मम्मी पापा के साथ बिताए हैं स्कूल के दिनों में। उन दिनों में हमारी सारी चॉइस जो है वो पूरी हो जाया करती थी, माता पिता तो करते ही है हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी। ऐसा ही एक और ईमेल हमारे पास आया है राधा शुक्ला का, वो लिखती हैं सबसे खूबसूरत पल गर्मियों की छुट्टियां होती थी बचपन में जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो वो मस्ती वो खुशियां बहुत याद आती हैं।
0: वाह,
1: तो ऐसे ही हमारे दोस्त और हमारे साथ जुड़े रहें, उनका प्रश्न है परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल, तो हमें आप ईमेल भेजते रहें। हमारा ईमेल आईडी है
0: भाई खुश रहना भी तो एक ईमेल है ना, और खुश रहना भी तो एक हुनर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों देखिए हम ऐसी बातें तो करते रहेंगे, साथ ही आपके लिए बहुत सारी जानकारियां भी हमारे पास होती हैं। एक और जानकारी है, एक प्रेरणादायक कहानी है बल्कि, कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ों से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया अपने हुनर के बल पर।
0: अच्छा,
1: तो लड़की एक लोक कला और उसे बचाने का सपना, ये कहानी है एपन गर्ल के नाम से मशहूर मीनाक्षी खाती की।
0: अरे वाह, तो भाई एपनगंज मीनाक्षी खाती की ये बात बता रहे हैं हम लोग। 6 साल की उम्र से जब मीनाक्षी ने पहली बार एपन बनाया तो उनकी दादी ने उन्हें गले लगा लिया। भाई एपन हम बता दें आपको, ये पहाड़ में जब एक तरह की रंगोली होती है, इसे जो है वो चावल को भिगो दिया जाता है और पीस लिया जाता है और गेरू को भी भिगो कर तैयार कर लिया जाता है, उससे ये रंगोली बनती है, उसको एपन कहा जाता है। तो मीनाक्षी खाती ऐसा एपन बनाती है। तो फिर उनकी दादी ने उन्हें गले लगाकर कहा कि भाई एक दिन तू इस कला से बहुत नाम कमाएगी। और वही हुआ भी दोस्तों, एपन जो है ये हमने जैसे बताया कि बहुत पुरानी ये लोक कला है और शुभ मौकों पर दीवारों और जमीन पर बनाई जाती है। तो इसका जो डिजाइन होता है ना वो संस्कृति और आस्था की कहानी कहती है दोस्तों।
1: बिल्कुल, और जब ये खूबसूरत कला लोगों के घरों से गायब होने लगी, नई पीढ़ी से दूर होने लगी, तभी मीनाक्षी ने ठाना कि भाई अपन को खत्म नहीं होने दूंगी। उन्होंने लोक कला को नए दौर से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने शुरू किया मीनाकृति द एपन प्रोजेक्ट, जहां एपन को कपड़ों, होम डेकोर, ज्वेलरी और आधुनिक डिजाइनों में उतारा गया और फिर से ये कला जीवित हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत एपन बनाती है मीनाक्षी जी, मैंने भी इनके बहुत सारे एपन देखे हैं कल्पना। और आज मीनाक्षी हजारों ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को एपन कला सिखा चुकी हैं,
1: सिखा भी रही हैं, और साथ ही अपने काम में मगन मीनाक्षी ने कभी ये नहीं सोचा जो हुआ उनके जीवन में आया वो पल जब उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकली बेटी को राष्ट्रपति भवन में अपनी कला को दिखाने का मौका मिला।
0: वाह, मीनाक्षी खाती ने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपनी जड़ों को संभाल कर रखा जाए तो भाई गाँव की मिट्टी से निकली कला भी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है ना कल्पना।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे प्रेम पुजारी फिल्म से, जिसे गाया किशोर कुमार ने। और कल्पना परिवार के साथ बिताया गया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है, ये हमारा सवाल था। और जो सवाल का जो जवाब आया है बड़ा एक दिल को छू लेने वाला ईमेल मुझे मिला है, आपको तो पढ़ दूं?
1: जी बिल्कुल।
0: नाम है मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा, और गांव शेरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से ये मेल हमें मिला है। वो याद कर रहे हैं अपनी माँ को और कह रहे हैं कि जब वो हैदराबाद से नौकरी करने के बाद घर आकर पहली बार माँ के गले मिले तो उनकी आंख में आंसू आ गए और खुशी इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत। लेकिन जब दूसरी बार वो माँ से मिले तो माँ बहुत बीमार थी और 5 दिन के बाद उनकी माँ नहीं रही। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी भावपूर्ण कविता भी लिखकर भेजी है और जिसमें वो लिखते हैं, माँ तेरी यादें, तेरी बातें अब याद आ रही हैं, माँ तेरी बातें अब याद आ रही हैं। और कहती हैं कि खेल खेल में जब बच्चों से झगड़ा हो जाता था तो मेरी माँ पास आकर मुझे दो चार

0: थप्पड़ लगा जाती थी और प्यार भी करती थी। और गर्मियों की छुट्टियों में के बाद जब मैं रोजाना खेत में जाया करता था तो अपनी माँ के साथ बैठकर खेतों में काम करवाता था। रात में जब लैंप जलाकर स्कूल का काम पूरा करता था, माँ तेरी वो सारी बातें अब याद आ रही हैं। और कहते हैं कि एक साल बाद वो नहीं रही और उनको गले में बीमारी हो गई थी और आज वो नहीं है, बट ये भी कहते हैं कि माँ बाप का प्यार किस्मत वालों को मिलता है। माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है। आप सब भी अपनी माँ से बहुत सारा प्यार करें, अपने बड़ों का सम्मान करें।
1: बिल्कुल, और देखिए यादों की यही तो खूबसूरती होती है कि यादें हमसे कभी जुदा नहीं होती। इंसान भले हमसे थोड़ा दूर हो जाते हैं लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमसे कभी जुदा नहीं होती। और एक और हमारे दोस्त हैं आशीष गिरी जी, वो लिखते हैं कि परिवार के साथ जब भी टाइम मिलता है खूब एंजॉय करता हूँ, खासकर अपने बेटे के साथ। गर्मी की पूरी छुट्टियाँ परिवार के साथ और अपने बच्चे के साथ बिताई हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास ईमेल आया है, उग्रसेन यादव जी लिखते हैं, आप दोनों को नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर आपकी अच्छी अच्छी बातें। कैसे आप दोनों समस्या बता रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और प्रदीप खंडेलवाल जी भी लिखते हैं कि वैसे तो परिवार के साथ बिताया हर पल खूबसूरत होता है, पर इससे ज्यादा खूबसूरत पल जब हमारा पूरा परिवार हमारी नन्ही पोती के साथ खेलता है।
0: और एक और संदेश आया है, वो कह रही है कि सबसे खूबसूरत पल वो था जब मेरे पापा ने मुझ पर पूरा भरोसा कर मुझे पहली बार विदेश भेजा। उन्हें यकीन था कि मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगी और वो विश्वास आज भी मेरी सबसे अनमोल यादों में से एक है। आप हैं मंजू दिल्ली से।
1: बहुत अच्छा, हमारे श्रोता हमें ईमेल भेज रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अब जो हमारी बातचीत है ये दो तरफा हो गई है। तो बातें तो हमारी चलती रहेंगी लेकिन साथ ही साथ एक जरूरी जानकारी है आपके लिए और मैं उसको इस तरह से शुरू करना चाहूंगी, बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता।
0: आज तो तुम बहुत कविता के मूड में हो, है ना कल्पना?
1: कविताएं पसंद है और मुझे लगता है कि कविताओं के माध्यम से हम गागर में सागर भर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए तो बस ये कहना चाहती हूँ अपने दोस्तों से कि भाई बच्चे जब नए नए युवा होते हैं तो उनमें जोश ज्यादा होता है और समझदारी कम होती है। ऐसे में कुछ बातें, कुछ सावधानियां उन्हें जरूर बतानी चाहिए जिसमें सबसे जरूरी है उनकी सुरक्षा जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं।
0: भाई आजकल की जो जनजी है वो तो बहुत समझदार है, वो जानती है भाई ड्राइविंग करें तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें। पर फिर भी हम एक बार ही बता देते हैं उन्हें कि ड्राइविंग सीखना आसान है लेकिन भाई गुस्सा ना करें, थोड़ा गुस्से को नियंत्रण पर रखें। भाई कोई ओवरटेक कर दे, गलत कट मार दे, गाड़ी में कोई नुकसान भी कर देना तो भी खड़े होकर कभी लड़ना मत, क्योंकि तुम नहीं जानते सामने कौन है, वो कैसा इंसान है। और तुम ये भी नहीं, तुम लेकिन तुम इतना जानते हो कि आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है ना कल्पना?
1: बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो कहते हैं कि सड़क पर ईगो जीतने से कुछ नहीं मिलता, सबसे बड़ी जीत है अपने घर सुरक्षित लौटना। सड़क पर बहादुर वो नहीं जो लड़ाई कर दे बल्कि वो है जो माहौल बिगड़ने से पहले वहां से हट जाए।
0: हाँ, और जो है हमेशा जो लाइसेंस लें उसका पेपर दे, एक लर्निंग लाइसेंस दे और उसके बाद गाड़ी ड्राइव करना सीखें। लाइसेंस के बाद सभी नियमों का, ट्रैफिक कानूनों का पालन करें और सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें और बहुत अच्छे गाड़ीवान बने, है ना?
1: बिल्कुल सही बात है। और इससे होगा क्या कि भाई जब आप अच्छी तरह से नियमों का भी पालन करेंगे और साथ ही आप अपने व्यक्तित्व में ऐसा शांत भाव लेकर आएंगे तो आपका हर सफर जो है वो सुहाना होगा।
0: और ये भी जरूरी है कल्पना की हम लोग एक अभिभावक की तरह जब सोचते हैं कि अपने बच्चों को 18 साल से पहले गाड़ी चलाने ना दें, जो कि कानून कहता है।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे सुहाना सफर फिल्म से, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने।
1: और अब हम एक कह देते हैं कि भाई हमारा जो भारत देश है उसमें खान पान जो है वो बहुत विविध है, उसके बारे में कुछ बात कर ले कल्पना।
0: बिल्कुल सही बात है, यहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन होते हैं और मौसम के अनुरूप जो व्यंजन होते हैं उनके स्वाद की तारीफ सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बाहर के लोग भी करते हैं जो विदेशों से आते हैं। तो आज आपके लिए लाई हूँ रेसिपी कर्नाटक के कलबुर्गी क्षेत्र की एक पारंपरिक रोटी, कलबुर्गी रोटी की, जो ज्वार से बनी एक पौष्टिक देसी रोटी है जो स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। इसके लिए बहुत कम सामग्री की जरूरत होती है, ज्वार का आटा, गुनगुना पानी और नमक चाहिए।
1: मुझे लग रहा है भाई ज्वार के आटे में नमक और गुनगुना पानी मिला लो, नरम आटा गून लो और आटे की लोई को बनाकर हाथ से या बेलन से रोटी के आकार में फैला लो और गरम तवे पर दोनों तरफ से सेक लो और भाई हल्का सा घी लगाओ और बैंगन की सब्जी हो, मूंगफली की चटनी हो, दाल हो, दही हो, हरी मिर्च हो, प्याज हो, भाई तो फिर तो कहने ही क्या है ना कल्पना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वाद मुंह में पानी आ गया है और पानी आने का स्वादिष्ट तो ये होती है लेकिन उसके साथ ही इसके बहुत सारे फायदे
1: होते भी होती है जी।
0: फाइबर से भरपूर होती है और पाचन में भी ये सहायक होती है, लंबे समय तक इससे पेट भी भरा रहता है और इसमें आयरन, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।
1: और भाई देखो, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने भी कहा है मन की बात में कि कर्नाटक की पारंपरिक कलबुर्गी रोटी को उल्लेख करा है उन्होंने और कहा है कि भारत के स्थानीय और पौष्टिक जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है ना।
0: बिल्कुल सही कहा है। और ज्वार से बनने वाली ये रोटी न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि महिला सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार का भी सशक्त माध्यम बन रही है। तो इस रोटी को अपनी थाली में शामिल कीजिए क्योंकि ये एक रोटी बढ़ा रही है रोजगार।
1: भाई हमारा मन तो करता है बातें करते रहे लेकिन जाने का तो समय हो रहा है ना भाई, कल्पना भूल रही हो रोटी के बनाती रह गई
0: थोड़ा सा। तो चलिए ये गीत सुनवाते हैं और फिर श्रोताओं से विदा।

0: आप ये गीत सुन रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म से, जिसे गाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। तो इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम के आज के अंक से मैं यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना
1: और रश्मि कुकरेती लेते हैं विदा और कहते हैं नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, सृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: चौहान ने कहा कि एलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National Security Advisors meeting will focus on non-traditional security challenges.
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his martyrdom day. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today said that the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED, is helping around 74 lakh farmers in the country.

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का स्वागत, खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही फिल्म और आज इस सिलसिले में जब हम आपको ले चलते हैं, आपको रोजाना एक फिल्म से रूबरू कराते हैं, तो आज हम आपको ले चलेंगे सन 1971 के उस दौर में जब पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने पर बनी एक फिल्म आई सिनेमाघरों में और उसने दर्शकों की आंखें नम कर दी। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी निर्माता सुदेश कुमार और निर्देशक पापी चाणक्य की क्लासिकल फिल्म मन मंदिर की। मन मंदिर एक ऐसी फिल्म जो कि भाई बहन के अटूट प्यार, त्याग और समाज के कड़वे सच को बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारती है। एक ऐसी फिल्म जिसने कि रिश्तों को एक नई परिभाषा दी। और अगर हम बात करें इस फिल्म के संगीत की, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत और मुकेश जी की आवाज में सजे इस फिल्म के जो गीत हैं वो इतने भावुक हैं और इतने लोकप्रिय रहे कि हर किसी की जबान पर वो आज भी अगर आप सुनते हैं ना तो झूम उठते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में भी हम उम्मीद करेंगे कि आप इस फिल्म के गीतों को, इस फिल्म से जुड़े हुए किस्सों को सुनेंगे और झूम उठेंगे। तो करते हैं शुरुआत किशोर कुमार की आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

ये दोस्तों जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और आज जिस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं 1971 की वो फिल्म जो कि इमोशंस में हम देखें वो एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम मन मंदिर। जिस फिल्म में देखें तो दो बड़े अदाकार जिनकी अदाकारी की लोग आज भी कसने लेते हैं, संजीव कुमार और वहीदा रहमान। जी हाँ, दो बड़े बड़े लीजेंड जो हैं वो फिल्म में रहे। और अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म में संजीव कुमार और वहीदा रहमान दोनों ने भाई बहन का किरदार निभाया है। संजीव कुमार ने दीपक भाई का किरदार निभाया, वहीं वहीदा रहमान ने उनकी छोटी बहन लक्ष्मी का किरदार निभाया है। और दोनों एक दूसरे को जान से बढ़कर चाहते हैं, माँ

है नहीं और दीपक ने ही लक्ष्मी को पाल पोस कर बड़ा किया। और दीपक का सिर्फ एक यही सपना है कि वो अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करे और उसकी जो जिंदगी है वो खुशियों से भर जाए। लक्ष्मी की शादी तय होती है रामू के साथ, रामू यानी कि राकेश रोशन, जो कि दीपक के दोस्त भी हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। शादी के अहम वक्त पर कुछ ऐसी गलतफहमियां होती हैं, कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियां खड़ी होती हैं कि दीपक को अपनी बहन की खुशियों और उसकी आबरू की रक्षा करने के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। शादी के बाद भी लक्ष्मी की जो शादी होती है उसकी जिंदगी में, उसकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे अजीबोगरीब उतार चढ़ाव आते हैं और सभी मुश्किलों के सामने ढाल बनकर खड़ा होता है उसका भाई दीपक। दीपक को अपनी बहन का घर बिखरने से बचाने के लिए अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, यहाँ तक कि अपने स्वाभिमान तक को भी कुर्बान करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म की एक कहानी नहीं बल्कि ये दिखाता है कि एक भाई बहन की जो खुशहाली, जो एक भाई है वो अपनी बहन की खुशहाली के लिए किस हद तक जा सकता है, भाई बहन का प्यार किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करता है, वो दिखाया गया है इस फिल्म में। उतार चढ़ाव, गलतफहमियां और आंसुओं के इस लंबे सफर के बाद आखिरकार सच्चाई की जीत होती है और जो बिखरे हुए रिश्ते हैं वो संभलते हैं, गलतफहमियां दूर होती हैं और वही भाई का जो प्यार था, भाई का जो त्याग था वो रंग लाता है और जो सब बिखरा होता है वो सब समझ जाता है और महकता हुआ एक मन मंदिर बन जाता है।

साथ जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और आज की फिल्म मन मंदिर। भाई अगर हम इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं तो इस फिल्म का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक हम इस फिल्म के संगीत और इस फिल्म के कुछ हल्के फिल्म के जो पल हैं उनकी बात ना करें। भाई जहां एक तरफ ये जो फिल्म है पूरी फिल्म गंभीर और पारिवारिक मोड़ लेकर रखती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में महमूद साहब की जो बेमिसाल कॉमेडी है वो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती है। और बीच बीच में जब भी महमूद साहब आते हैं ना तो वो भावुक हुए मन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा हंसने के लिए मजबूर तो कर ही देती है। वहीं दूसरी तरफ किशोर कुमार जी, लता जी की आवाज

जी दोस्तों, जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, राज की फिल्म मन मंदिर। और जैसा कि हमने कहा कि जो फिल्म का संगीत था उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने गीत लिखे, आनंद बख्शी साहब ने। और उस दौर में जब ये फिल्म आई थी उस वक्त में वैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जो जोड़ी है वो हमेशा ही ऐसा कमाल करती थी कि जिस फिल्म में भी वो आ जाए तो वो म्यूजिकल हिट तो हो ही जाती थी। और वही कमाल इस फिल्म में भी हुआ, लेकिन इस फिल्म में एक श्रेय इस फिल्म की कहानी को भी जाता है जिसको निर्देशित किया तापी चाणक्य ने। अब तापी चाणक्य कौन है आप सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि ये इस फिल्म के डायरेक्टर तो हैं और वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि ज्यादातर तेलुगु और तमिल सिनेमा में उन्होंने काम किया और बड़े बड़े फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया। यहाँ तक कि एन टी रामा राव के साथ उन्होंने बहुत सी ब्लॉकबस्टर जो फिल्में हैं वो बनाई थी। लेकिन जब उन्हें हिंदी सिनेमा में आने का मौका मिला तो उन्होंने चेन्नई के एक प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई मन मंदिर, जो कि पूरी तरह से बिल्कुल चेन्नई वाले हिसाब किताब से एकदम अलग, ठेठ उत्तर भारत की जो पारिवारिक मूल्य थे उन सबको मिला करके ये फिल्म बनाई गई थी। और जो फिल्म की शूटिंग है उसका पूरा जो बड़ा एक हिस्सा है वो चेन्नई के मशहूर वाहिनी स्टूडियो में हुआ था शूट। है ना कमाल की बात कि मतलब ये फिल्म बनी पूरी तरह से चेन्नई में थी, लेकिन इसका जो पूरा एक सेट था वो पूरी तरह से उत्तर भारत के जो भाषा, उत्तर भारत का पहनावा और वहीं सबकी चीजों को लेकर बना था। और ये फिल्म ने कमाल दिखाया क्योंकि इस फिल्म में मतलब भाषा का और क्षेत्र की सीमाओं को सबको तोड़कर एक ऐसी फिल्म बनाई तापी चाणक्य ने जो कि पूरे देश के मन मंदिर में बस गई।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीकानेर से रानी जाप और बिट्टू जाप हमारे साथ जुड़े हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं राधे दीपक और अंकुर राघव गुप्ता के साथ। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने फिल्म की काफी अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई है। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक, आलोकिक चंदसौलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी एक और बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि तापी चाणक्य द्वारा निर्देशित ये एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा था और ये संदेश उन्होंने हम तक पहुंचाया है। प्रमिला भावसार के साथ वीरगांव गुजरात से अगला संदेश हम तक पहुंचाया है सुनील पाठक जी ने और ये संदेश इन्होंने हम तक कहां से पहुंचाया है ये हमें नहीं पता चल रहा है। अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं और इसको भेजा जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा ने खुशनुमा ये संदेश भेजा है हमारे पास से। गुरमीत सिंह मीता जी ने

साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ जुड़े हैं। मालियान सरदना से अनिल जैन, जैन साहब संयम जैन, मुस्कान मास्टर जिव्यम जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजल का पंजाब खेड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ा है। भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, तिवानशी, वाणी और आरवी खेड़ा, जीवन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल दिवांगन, कौशल्य दिवांगन, हेमलता डिम्पल दिवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश भेजा है पंजाब के वड़िंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। नेहरू चौक पैटर्न से हमारे साथ जुड़े हैं सूरज जाधव, अनीता सोनल प्रसाद जाधव के साथ मंटू शर्मा, सुशीला, लीलाधर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके साथ इनके दोस्त राजू अग्रवाल चौधरी वास से हमारे साथ जुड़े हैं। गांव शेरड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। अपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिदार, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनारायण साहू, कुमारी योगिता, कुमारी गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई साहू हमारे साथ जुड़े हैं। भाई ग्राम भाईना बोईना पार लाटापोर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। सुधाकर राजा जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, सर्वत, प्रणाली, सानवी, हर्षदा देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेदप्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी, अंगद परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ हम तक जुड़े हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन हमारे साथ जुड़े हैं। शांतिनगर सोनीपत से कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली देवी, पूजा, राधिका प्रभा और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हैं और लिखते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मन मंदिर फिल्म में अभिनेता राकेश रोशन द्वारा साइन और शूट की गई सबसे पहली फिल्म है। हालांकि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग सबसे पहले शुरू की थी, लेकिन उनकी दूसरी साइन की गई जो फिल्म घर घर की कहानी है वो पहले बनकर तैयार हो गई और सिनेमा घरों में रिलीज भी हो गई। बहुत खूबसूरत जानकारी। और साथ ही साथ लिखते हैं कि वहीदा रहमान और संजय कुमार के साथ बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने साइन की। खूबसूरत जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बबली जी। और उन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है गांधी चौक बढ़ने राजस्थान से। इनके साथ है डैनी पवार और मनीष पवार के साथ ये जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेलो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल और मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताड़े हमारे साथ जुड़े, नारायण इंगले, आशीष मुरहरकर के साथ। और ये अगला संदेश बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन जी का। और जो संदेश हमारे पास आया है अगला, सौरा श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान, युसरा जान, इम्तियाज और मुस्ताक डार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रानगर भवरपुर से राधेश्याम दिवांगन, चंपा, राजू, नेहा, जगदीश दिवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो अगला संदेश है हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा का। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़ी है, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा के साथ। छोटी बरेलिया से हमारे पास संदेश भेजा अहमद फूल वाले ने, संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जलंधर, पंजाब से ये संदेश उन्होंने हम तक पहुंचाया है। नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, निसार सलमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनौरी टेलीवाला उत्तराखंड से। तो दोस्तों ये थे वो ढेर सारे संदेश जिनके जरिए आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। बाल्की जी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और सुदर्शन मुखी जी का एक और संदेश, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी जी का है, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पॉल विलेज डिकैस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हैं, दत्तरेंगी भट्टापारा से भागवत शर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम। और ये अगला संदेश कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान जी का। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए आप हम तक जुड़े। और कार्यक्रम में हमने बहुत सी चीजों के बारे में बातें की। पुराना सिनेमा हमें बहुत सी चीजें सिखाता था किस

0: वो चीज़ें हमें सिनेमा से सीखने को मिलती थी, लेकिन अब ये सफ़र होता है यहीं पर ख़त्म। मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। छोड़े जाती हूँ, लेकिन यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का इन प्रस्तुत चैनल है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के नाम में सरबजीत कौर, पहले बुलेटिन दिया खास खबरें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल ने नवी सुरक्षा खतरों से चुनौतियों प्रति सुचेत रहने की लोड़ से जोर दिता है। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड के नीलामी पोर्टल nafix.in लॉन्च किया। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौसम के अलमीनो प्रभाव और खेतीबाड़ी के सैक्टर बारे एक जायजा मीटिंग की। किसानों को कोई मुश्किल दरपेश न आन देने की सरकार की वचनबद्धता प्रगटाई। भारत के अमरीकी राष्ट्रदूत सुशील गौर ने कहा कि भारत से अमरीका एक मजबूत दवले व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने वाल फैसलाकुन तौर पर अगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या से राम मंदिर को मिले दान की हेराफेरी के इल्जाम की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT ने अपनी मुढ़ली जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। भारत ने अमरीका और ईरान विचकार हुए समझौते अमलों का स्वागत किया है। नवी दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारा की मीटिंग में संबोधन करदिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल ने कहा कि यह दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। उन्होंने होरमुज पड़जोड़ से खुलण का भी स्वागत किया और स्पष्ट जोर दिया कि यह सप्लाई लड़ी दुकावटों दूर करन और खादा से रसायणा वर्गिया वस्तों की घाट न हटाने में मदद करेगा। श्री डोवाल ने इस गल से भी जोर दिया कि खेतर और इस तो अगे नैविगेशन की वधेरे आजादी आर्थिक खुशहाली में योगदान पाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया फौजी टकराव भू सियासी अनिश्चितताव आर्थिक तनाव और विघनकारी तकनोलॉजिया वाले एक उथल पुथल के दौर लग रही है। उभर रही सुरक्षा चिंतावान उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि गैर रवायती खतरे ने राष्ट्रीय सरहदा पार कर लिया, रवायती प्रतिक्रियावान चुनौती देने वाली समर्थाव विकसित कीतिया ने। उन्होंने एक बदती डिजिटाइज दुनिया में नवी विघनकारी तकनोलॉजिया दहशतगर्दी के बदते हुए लुकवें रूपों और साइबर खतरों की पछाण से समूहिक ध्यान देने की लोड़ वाली चुनौतियों वजो की।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: श्री डोवाल ने इस गल से जोर दिया कि ब्रिक्स देशों की वक् वक् महाद्वीपा और तजर्बों की नुमाइंदगी करने के बावजूद तेजी से बदल रहे संसार में एक विशेष भूमिका है, जिसे टकराव के हल के रवायती साधन घट प्रभावशाली होंगे जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि समूले ये अहम है कि वह इन विकसित हो रही चुनौतियों को हल करने में अपनी भूमिका से विचार करे। ब्रिक्स की भूमिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समूह को एक होर बहुत रूपी विश्व व्यवस्था को उत्साहित करन, आर्थिक सहयोग को मजबूत करन और आलमी दखण की आवाज को वधाउण लई उभर रही आर्थिकतावां दे एक गैर रस्मी गठजोड़ वजो तैयार किया गया सी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने आलमी शासन और संस्थागत सुधारा विच सुधारों का भी दृष्टिकोण दिता। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नैशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड देश के करीब 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने यह गल नवी दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन विखे नाफेड के नीलामी पोर्टल nafix.in को लॉन्च करदिया कही।
3: नाफेड ने एक प्रकार से nafix.in दृष्टि ERP और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: उन्होंने भी कहा कि आने वाले 1.5 साल सहकारिता मंत्रालय ये यकीनी बनाएगा

0: सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: खेती बाड़ी और किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में मौसम के अर्मी प्रभाव से खेतीबाड़ी के इसके असर के मद्देनजर एक जायजा मीटिंग की थी। मीटिंग में कई राज्यों के खेतीबाड़ी मंत्रियों, सचिव, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने शिरकत की थी। विचार वटांदरे दौरान घट बारिश की स्थिति में जरूरी तैयारियां, विकल्प फसल योजनावां ते किसानां दे हितां दी रक्षा ते ध्यान केंद्रित कीता गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि संभावित अल नीनो हालात नूं ध्यान विच रखते हुए सरकार किसानां दे हितां दी राखी करन अते खेतीबाड़ी ते खेती ते किसे भी माड़े प्रभावां नूं घट करन लई पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने अगे कहा कि सरकार हर स्थिति का सामना पूरी तैयारी, संवेदनशीलता ते तालमेल नाल करेगी तां जो किसानां नूं कोई मुश्किल ना आवे। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा xnla@eir.in। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे दूजे नागरिक सम्मान समारोह विच पद्म अवार्ड प्रदान करनगे। साडे पत्रकार ने खबर दिती है कि आज कुल 65 अवार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिन्हां विच 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल ने। इस साल केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म अवार्डा का ऐलान किया है। इन्हां विच 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल ने। अवार्ड प्राप्त करने वालों विचों 19 औरतां ने, जदों कि 16 नूं मरण उपरंत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सब तो उच्च नागरिक सम्माना विचों एक ने आज राष्ट्रपति 65 प्रतिशत शख्सियतों को पद्म अवार्ड प्रदान करेंगे। इन्हां विच टेनिस के महान खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार मोटी, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वर्गिया प्रमुख हस्तियां शामिल ने। 1994 में शुरू किए गए इन अवार्डों का ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस से किया जाता है। व्यापार ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने आज नवी दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर नाल मुलाकात की। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वह भारत और अमरीका विचकार एक दुवल्ले व्यापार समझौते से उसारू चर्चावां की उम्मीद करते हैं। इस दौरान गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका एक दुवल्ले व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर फैसलाकुन तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, जो दोनों देशों के नए आर्थिक मौके खोलेगा और अमरीका भारत आर्थिक भाईवाली को महत्वपूर्ण तौर पर मजबूत करेगा। अयोध्या के राम मंदिर में मिले राम की हेराफेरी के इल्जामों की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT ने आपकी मुंडली जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ के डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने प्रदेश मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने कहा कि जांच अजे भी जारी है और होर तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में मिले राम की हेराफेरी के इल्जामों के बाद मंदिर ट्रस्ट की बेनती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक कथित अध्यापक भर्ती परीक्षा धोखाधड़ी मामले के संबंध में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर और मदुरई में 18 थावां से तलाशी ले रहा है। डायरेक्टोरेट ने कहा कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा वालों 2017 में दर्ज की गई एक FIR से आधारित है। देश में 5 लाख से वध अंग दान का अहद लिया गया है। ये अंग अते टिशूदान प्रति लोगों में बढ़ रही जागरूकता और समूहक वचनबद्धता को दर्शाता है। सेहत के परिवार भलाई मंत्रालय ने कहा कि अंगदान ट्रांसप्लांटेशन में उड़ीक कर रहे मरीजों को उम्मीद और जीवन में दूजा मौका देता है। मंत्रालय मुताबिक ये प्राप्ति समाजिक जिम्मेवारी और भाईवाली को विकसित करने लिए सरकार के निरंतर यत्नों का नतीजा है। राष्ट्रीय अंग टिशू ट्रांसप्लांट संगठन के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार ने अंगदान लिए देश भर के नागरिकों वालों मिली भारी हिम्मत लिए धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने सारिया राज सरकार केंद्र शासित प्रदेशों की निरंतर वचनबद्धता और सहयोग की भी शलाघा की थी। आखिर खास खबरें एक बार फिर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने नवे सुरक्षा खतरिया और चुनौतियों प्रति सुचेत रहने की लोड़ पर जोर दिता है। गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड़ के नीलामी

0: स्टॉक इन लॉन्च किया। खेती बाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौसम के अल नीनो प्रभाव से खेती बाड़ी के इस असर बारे जायजा मीटिंग की। किसानों को कोई मुश्किल दरपेश न आने देन की सरकार की वचनबद्धता प्रगटाई। भारत के अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि भारत से अमरीका एक मजबूत बल्ले व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर फैसलाकुन तौर से आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान ही सादा ये बुलेटिन खत्म होता है।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातजा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। लियोनल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वो अर्जेंटीना नॉकआउट मरहले में सबसे आगे हैं। आज लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65वें पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग ये अवार्ड दिए गए हैं। टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार मम्मूटी, फिल्मी गुलकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा अवार्ड गैर मामूली खिदमात के अतराफ़ में तफवीज़ किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तजारत और सनत, अद्वियात, अदब व तालीम, खेल कूद, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दिद शोबों में अदा किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रज़ी अहमद।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड से याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
3: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है,
4: मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
5: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुरुदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
1: नाइब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के दिन के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नाइब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर मुखर्जी को एक नामवर माहिर तालीम, अजीम मुजाहिद आजादी और एक दूर अंदेश रहनुमा करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुमताज मुहिब वतन स्कॉलर और मुदब्बिर डॉक्टर मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया

0: इंडिया लिमिटेड नेफेड मुल्क में तकरीबन 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड ऑक्शन पोर्टल nefex.in के लॉन्च के मौके पर कही।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का 1 दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है, विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है।
0: जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर दाखिला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कौम परस्ती, सकाफती कौम परस्ती और भारतीय सकाफत के हामी थे। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमत नामे का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस मफाहमत नामे के नतीजे में दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। उन्होंने आबनाए हुरमुज खोले जाने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई में हायल रुकावटें दूर होंगी और कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद जैसी चीजों की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। जनाब डोभाल ने कहा कि खित्ते और खित्ते से बाहर जहाजरानी की ज्यादा पेशरफ्त से इक्तसादी खुशहाली को फरोग हासिल होगा। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है, जहां फौजी तनाज़ियात, जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी इक्तसादी मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है जो रुकावट डाल सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहानात के मामले में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्टोरेट का कहना है कि मरकजी क्राइम ब्रांच की जानिब से 2017 में दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसने ये भी बताया कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्दे जुर्म दाखिल की थी। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में खुदबुद के इल्जामात की छानबीन करने वाली खसूसी जांच टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने उमूर दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट दी है। हुकाम का कहना है कि तफ्तीश अभी जारी है और मजीद हकायक जमा किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के मौसम और ज़राअत पर असरात के पेश नज़र आज नई दिल्ली में सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में कई रियासतों के ज़राअत के वज़ीरों, सेक्रेटरीज, जिला कलेक्टरों और दीगर अहलकारों ने शिरकत की। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, मकरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना और केरला में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने पहला गोल 38वें मिनट में किया जबकि दूसरा गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ कप्तान से होगा। चीन के हुलन बियोक में मुनाकिदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर

0: group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Ulaanbaatar, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history and leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Kanak Lata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेस्सी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं राव का काम सीखा, अंगूली का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुरुदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।

0: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का था। और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
1: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक डॉट इन दृष्टि ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुस जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और

0: क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जाँच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
3: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और

जनता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी के होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। दोस्तों, कार्यक्रम है हमारा एक ही कलाकार, जहाँ हम हर रोज मिलते हैं एक नई दास्तान, एक नई शख्सियत के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति, और आज बात होगी एक ऐसे अदाकार के बारे में जिन्होंने अपनी बेबाक आंखों, दमदार आवाज और बेमिसाल अदाकारी से 80 और 90 के दशक में एक अलग ही डंका बजाया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलकर एक आम लड़का जो आगे चलकर बनता है सिनेमा का एक अनमोल नगीना। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसे आप सभी और हम सभी जानते हैं राज बब्बर के नाम से। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत उनके हसीन गीतों और दिलचस्प किस्सों के सिलसिले को।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुरी पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना? हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक

होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहाँ के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओ, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओ, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओ, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण

0: उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
0: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

0: बिस्तर है इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चल चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है? क्या करें हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपनी कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे, ये कैसा सवाल? हाँ। है क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या
2: है?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो। चलो
1: चलो
3: चलो जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सभी आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम आदब नुमा। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और

5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों को, फिल्म थी गंगा जमुना, मौसीकार थे नौशाद। और समझ लीजिए, सुनिए शारदा सिन्हा की आवाज में असद भोपाली का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी से हिदायत राम लक्ष्मण ने, फिल्म है मैंने प्यार किया।

0: वृंदावन राम का करें विभाजन लोग, एक ही तन में देखिए तीनों का संयोग। और देखिए सपना झरना नींद का, सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास, सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास, जागी आंखें प्यास पाना खोना खोजना जीवन का इतिहास। सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास और पाना खोना खोजना जीवन का इतिहास। और दुआ अर्थ कर रहा हूं कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार और दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और देखिए कि एक पलड़े में प्यार रख दूजे में संसार और बिन तोले मत मानिए किसमें कितना भार, बिन तोले मत मानिए किसमें कितना भार। और चाकू काटे बांस को बंसी खोले भेद, चाकू काटे बांस को बंसी खोले भेद और उतने ही सुर जानिए जितने इसमें छेद, चाकू काटे बांस को बंसी खोले भेद उतने ही सुर जानिए जितने इसमें छेद। और बहने चिड़ियां धूप की दूर गगन से आए, बहने चिड़ियां धूप की दूर गगन से आए, हर आंगन मेहमान सी पकड़ो तो उड़ जाए। और जितना भीगे बावरी उतनी सुलगे प्यास, जितना भीगे बावरी उतनी सुलगे प्यास। और सावन बरसे 60 दिन नैना 12 मास। एक आखिरी दुआ भेज कर रहा हूं कि सूरज से धरती तपे छाया ढूंढे काग, सूरज से धरती तपे छाया ढूंढे काग, तन के अंदर मन जले धुआं दिखे ना आग।
1: अभी आप जनाब निदा फाजली से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। समीन, कलामी शायर से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अफसाने की। अफसाना असल में वो कहानी है जो हमारे आसपास की कहानी है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसके किरदार हमारे आसपास के ही होते हैं, लेकिन एक आम आदमी की निगाह उन्हें देख नहीं पाती। लेकिन जब एक कलमकार किसी वाकये को या किसी किरदार को जीता है तो अपने कलम के जरिए उस किरदार को जिंदगी अता कर देता है। ऐसी ही एक कहानी या अफसाना लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इकबाल अंसारी। आइए उनसे सुनते हैं उनका यह अफसाना वापसी का सफर।
2: अवध आसाम एक्सप्रेस अपने मुकर्रा वक्त पर दिल्ली जंक्शन से रवाना हुई थी और अगली सुबह अपने मुकर्रा वक्त पर उसने अपना 1105 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। करीब करीब नाकाबिले यकीन था कि इतना तवील सफर एक एक्सप्रेस ट्रेन ने एक भी मिनट की ताखीर के बिना तय कर लिया था। माजिद अपना बैग शाने से लटकाकर अपने स्लीपर कंपार्टमेंट से बाहर आ गया। उसे अगर यहां शहर में एक जरूरी काम न होता तो वो अवध आसाम एक्सप्रेस से आने के बजाय स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से आता ताकि उसे यहां गाड़ी तब्दील न करनी पड़ती और वो सीधे अपने शहर ही उतरता। तेजी से कदम उठाते हुए वो स्टेशन से बाहर आ गया, एक रिक्शा लिया, ताजपुर रोड पर पहुंचकर अपना काम निमटाया और दूसरा रिक्शा लेकर फिर रेलवे स्टेशन आ गया। एक बार फिर उसे हैरत हुई, सियालदा से आने वाली पैसेंजर गाड़ी अपने मुकर्ररा वक्त पर आ रही थी। ये तो उसे बाद में मालूम हुआ कि इस गाड़ी को तो कल आना था, यानी ये गाड़ी 24 घंटे लेट चल रही थी। बहुत थोड़े से लोग प्लेटफॉर्म पर इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। बहरहाल ट्रेन आई, बराए नाम लोग सफर कर रहे थे। माजिद बड़े आराम से एक कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया। पूरे कंपार्टमेंट में उसके अलावा सिर्फ

दो मुसाफिर और थे जो कहीं पीछे से आ रहे थे। माजिद खिड़की के साथ वाली एक सीट पर बैठ गया और ट्रेन के रवाना होने का इंतजार करने लगा। चार बरस बाद घर जा रहा था। चार बरस तक दिल्ली में कमाकर अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप और दोनों छोटे भाइयों को पैसा भेजता रहा। दोनों भाइयों के बारे में जो रिपोर्टें उसे घर से मौसूल होती थी वो तश्वीशनाक थी। मजबूरी उसे अपनों से 1150 किलोमीटर दूर ले गई थी। अपने छोटे भाइयों से वो बहुत प्यार करता था, उन्हें खूब पढ़ाना चाहता था, जज बनाना चाहता था, इसलिए उसने इन चार बरसों का लम्हा लम्हा किफायत शियारी में गुजारा था और 20,000 रुपए पसंदाज किया था। सारा पैसा बड़े नोटों की शक्ल में बैंक से निकालकर उसने अपनी कमर में बांधा था और अवध आसाम एक्सप्रेस से घर के लिए रवाना हो गया था। इन चार बरसों में उसमें काफी तब्दीलियां आ गई थीं। जब वो दिल्ली आया था तो बहुत दुबला पतला था, गालों की हड्डियां बदनुमाई की हद तक उभरी हुई थीं, पिचके हुए गाल, गढ़ों में धंसी हुई सी आंखें, लंबी सी गर्दन, पतले पतले हाथ। दिल्ली में काम मिला और पानी ऐसा रास आया कि वजन 2 साल में ही 55 किलो से 72 किलो हो गया। बशमूल चेहरे के सारे बदन पर खूबसूरत खूब गोश्त चढ़ गया, रंगत का सांवलापन गायब हो गया, खिलती हुई शफाफ गंदमी रंगत निखर आई जिसमें खून की सुर्खी अपनी मध्यम सी झलक चेहरे पर दिखाती रहती। दिन भर खराद मशीन पर काम करने और रात देर तक उर्दू फिक्शन पढ़ते रहने के सबब आंखें अलबत्ता कुछ कमजोर हो गई थीं और ऐनक लग गई थी। उसके शहर का कोई शख्स आज 4 साल बाद उसे देखता तो पहचान न पाता। उसका जी चाह रहा था कि ट्रेन जल्दी से उसके शहर पहुंच जाए। ट्रेन चली और जल्दी ही स्टेशन यार्ड से बाहर आ गई। 4 साल बाद मानूस नजारे फिर आंखों के सामने थे। ये बाएं जानिब वाली लाइन दिल्ली जा रही है और ये सड़क ये और ज्यादा टूट गई है। इसी पर तो एक बार मेरा रिक्शा पलट गया था। और ये रही बूढ़ी गंडक, क्या जवानी चढ़ती है उस पर जुलाई अगस्त में, कभी कभी तो जून में ही चिंगाड़ने फाड़ने लगती है। यार ये ट्रेन इतनी सुस्त रफ्तार से क्यों चल रही है, पैसेंजर ट्रेन में बस यही खराबी है। चलो पुल निकल गया, मुक्तापुर आने वाला है, फिर किशनपुर आएगा, फिर हयाघाट, फिर थलवारा, उसके बाद लहरिया सराय और फिर मेरा। ये क्या हो रहा है, कौन है ये शख्स जिसे वो पांचों जरायम पेशा से नजर आने वाले अफराद लाठियों से पीट रहे हैं। लो वो गिर गया, बचेगा नहीं। ये क्या हो रहा है मेरी धरती पर, बेचारा मर जाएगा। और ये सारे का सारा इलाका इतना उजाड़, इतना गैर आबाद सा क्यों नजर आ रहा है, क्यों ना नजर आए, गरीबी की मार कोई कहां तक झेले। रियासत से बाहर जाना लोगों की मजबूरी बन गया है। चंद तिजोरियां भरी हैं, बेशुमार पेट खाली हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग रोज ही कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पंजाब के लिए निकल रहे हैं, जहां वो कुलीगिरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और रात को किसी फुटपाथ पर या किसी पार्क में पड़ रहते हैं, एक नई सुबह के इंतजार में जो पुरानी सुबह से कतई मुख्तलिफ नहीं होती। पुरानी सुबहों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। भूख करती है इंसान को अपनों से दूर, अपने शहर से दूर, अपनी मिट्टी से दूर। भूख कराती है दरबदरी और कितना तशद्दुद फैल गया है। भूख इंसान को तशद्दुद पर आमादा करती है, तशद्दुद इंसान की बस्ती में बदअमनी फैलाता है, भूख फैलाता है। जहां भूख होगी वहां तशद्दुद होगा, जहां तशद्दुद होगा वहां भूख होगी। पेट की भूख, बदले की भूख, ताकत की भूख। ये वही सरजमीन तो है जिस पर बौद्ध धर्म की तबलीग सबसे पहले हुई थी। बौद्ध धर्म जिसका मूल मंत्र है अहिंसा, अदम तशद्दुद, अहिंसा परमो धर्मा का संदेश।

0: देश दुनिया को इसी मिट्टी इसी धरती से तो गया है। गाड़ी मुक्तापुर पर रुकी। कंपार्टमेंट में मौजूद वो दोनों मुसाफिर जो कहीं पीछे से आ रहे थे उतर गए। अब कंपार्टमेंट में सिर्फ माजिद रह गया था। कमर कटने सी लगी थी। माजिद ने कमर से रुपया खोलकर बैग में रख लिया और फिर बैठकर खिड़की से अपनी धरती अपने माहौल का नजारा करने लगा। ट्रेन रवाना हुई तभी उसने देखा कि दो पुलिस वाले एक लड़के को पकड़े ले जा रहे थे। लड़के का हर अंदाज खासा जारहाना था। ये इतने छोटे लड़के को ये लोग कहां पकड़ कर ले जा रहे हैं? 15-16 साल का ये लड़का न जाने क्या जुर्म कर बैठा। बेचारा जेल जाएगा और शायद वहां से पक्का मुजरिम बनकर निकलेगा, कौन जाने। नौजवानों को अच्छी तरबियत नहीं मिल रही है। गाड़ी किशनपुर पर रुकी और 2 मिनट के बाद जब चली तो दो नौजवान कंपार्टमेंट में दाखिल हुए। माजिद खिड़की से अपनी धरती का नजारा करता रहा जिसकी मिट्टी की रूह अफ़ज़ा महक उसकी रग रग में रची हुई थी। ये छतरी से नजर आने वाले ताड़ के खूबसूरत दरख्त, तालाबों के ठहरे हुए शांत पानियों पर मखाने के गुलाबी से नजर आने वाले ये खूबसूरत पत्ते, दूर पर महुए का वो, माजिद चौंक पड़ा। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो दोनों नौजवान जो अभी किशनपुर पर कंपार्टमेंट में आए थे माजिद के सामने खड़े थे। एक के हाथ में देसी तमंचा था जिसकी मोटी भद्दी नाल का रुख माजिद की तरफ था। खड़ा हो। खाली हाथ नौजवान ने दुरुस्त लहजे में माजिद से कहा। माजिद चुपचाप खड़ा हो गया। नौजवान ने उसकी पैंट से उसका पर्स निकालकर अपनी पैंट की जेब में रखा, उसके हाथ से घड़ी खोलकर अपने पैंट की जेब में रखी और फिर उसकी मुकम्मल तलाशी ली। कुछ भी नहीं मिला। माजिद के बैग की तरफ इशारा करके बोला, इसमें क्या है? माजिद ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अब्बा के लिए एक कुर्ता पैजामा, अम्मा के लिए शलवार जम्पर दुपट्टा, तुम दोनों के लिए एक एक पैंट शर्ट का कपड़ा और तुम्हारी ऊंची तालीम के लिए जमा किए हुए 20,000 रुपए।
1: वापसी का सफर। अभी जनाब मोहम्मद इकबाल अंसारी से आप उनका ये अफसाना सुन रहे थे। उम्मीद है आपको अफसाना पसंद आया होगा। आइए अब चलें जरा मौसीकी की दुनिया में, जहां गजल सरा है जगजीत सिंह।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश बंधन फिल्म का नगमा कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में।

इस गजल के साथ ही सामिन आज का हमारा ये प्रोग्राम अदबनुमा अब खत्म होता है। उम्मीद है हर मरतबा की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अपनी राय और मशवरे जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है उर्दू सर्विस ESG@gmail.com। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत

0: खुशी भोले भोले भोले।
1: और सामने लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में आमने सामने फिल्म का नगमा नमन यार आनंद बख्शी मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

0: भरोसा फिल्म कलाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमनिकार थे राजेंद्र कृष्ण, मौसीकार रवि। और सामने सुनी महेंद्र कपूर के साथ उषा खन्ना की आवाजों में कंगन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: जो तेरे में

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी सजाए नगमा, फिल्म थी मन मंदिर। और छावेली अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में रखवाला फिल्म का नगमा, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

0: एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि वो भारत और अमरीका के दरमियान दो तरफा तजारती मुआहदे पर सूदमंद तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस की भर्ती के इम्तहानात के सिलसिले में मुबैना धानले के मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुराई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्टरेट का कहना है कि मरकजी क्राइम ब्रांच की जानिब से 2017 में दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसने ये भी बताया है कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्द जुर्म दाखिल की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया है। जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनका शुमार मुल्क के सबसे ज्यादा अजीम रहनुमाओं में होता है जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती को महफूज रखने में मदद की। उन्होंने नेफेड नीलामी पोर्टल शुरू करते हुए नई दिल्ली में एक इज्तिमा से खताब करते हुए ये बात कही। इंसानी हकूक से मुतालिक कई तंजीमों और कारकुनों ने चार बलोच सरगर्म कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने की शदीद मजम्मत की है जिनमें महरांग बलोच भी शामिल हैं। उन्होंने इस फैसले को सरीहन नाइंसाफी और पाकिस्तान की तरफ से की गई इसे अदालती दहशतगर्दी करार दिया। इससे पहले पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फ्रंटियर कोर के एक अहलकार के कत्ल से वाबस्ता चार बलोच कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बलोच कौमी तहरीक ने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द ममलकत करार देते हुए इल्जाम लगाया है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान में खौफ हरास और दहशतगर्दी फैलाने के लिए अपने इदारों का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल में बदनवानियों की जांच करने वाले कमीशन ने 16 अफराद के खिलाफ बदनवानियों के सिलसिले में काठमांडू के खसूसी अदालत में एक केस दर्ज कराया है। इन 16 अफराद में पासपोर्ट के महकमे के डायरेक्टर जनरल तीर्थराज आर्याल भी शामिल हैं। पासपोर्ट के महकमे के डायरेक्टर जनरल तीर्थराज आर्याल और इतलाती टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर सुनील कुमार केसी के खिलाफ पासपोर्ट की छपाई में होने वाली बदनवानियों के लिए यह केस दर्ज किया गया है। अवामी जमहूरी कांगो में इबोला में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़कर 1000 से ज्यादा होने की तस्दीक हो गई है। मुल्क के सेहत के हुकाम ने 267 अमवात की तस्दीक की है। 371 मरीजों को अलग थलग रखा गया है या फिर वो अस्पताल में जेर इलाज हैं जबकि 112 अफराद रूब सेहत हो चुके हैं। इतवार को 60 अमवात समेत 202 मुश्तबा मामलात का भी पता चला था। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। लायन मेस्सी फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आमनाए हुरमूज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है और अवामी जमहूरी कांगो में इबोला में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1073 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मिनट पर अपनी तीसरी

0: دریان تاسپور کې خبر لنګین جوت پین میډیم ویو کې د آکاش وانی کرکلین واسو په دغه تو سو دغه نه فت څنګه کاسه تا نازن زچاسي فند کې سکولر د لوکسي هاګورین نه زه ډاکټر امبوج شکلې کنه.
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम में.
2: दोस्तों, जैसा हम सभी ने जो ये भौतिकवादी जीवन अपना लिया है जिसमें हम बहुत देर रात तक जगते हैं, हमारी दिनचर्या बिल्कुल अनियमित हो गई है, भोजन का कोई समय नहीं है, इस समय हम कई बार कोशिश करते हैं कि जो हमारा नाश्ता है और जो हमारा लंच है वो दोनों एक हो जाए. हम कई बार सुबह उठकर कुछ नहीं खाते होते हैं और सीधे हम 10, 11, 12 बजे या

0: उससे भी देर में हम एक बार भोजन कर लेते हैं और हमसे कहते हैं कि ये कॉम्बो पैक है हमारा, ये लंच और नाश्ता दोनों है। अब हम ये अपनी सुविधा अनुरूप कर तो लेते हैं, लेकिन क्या सुबह का नाश्ता करना जरूरी है? यदि हम वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो क्या हम अपने शरीर को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं? कोई और हमें ऐसी दिक्कत हो सकती है? और यदि हम सुबह का नाश्ता कर लेते हैं तो हमें क्या फायदा होगा? अब ये हम जाने कैसे कि भाई नाश्ता जरूरी है अथवा नहीं जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो इस विधा में कार्यरत हो, जो इसमें विशेषज्ञता रखता हो। और ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबुज शुक्ला, और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि भाई नाश्ता जब हम स्किप करते हैं तो उससे क्या हानि होती है, और यदि हम करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: नाश्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें रात में खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं, और उसके बाद फिर बहुत एक लंबा समय होता है जिस समय हमारा शरीर कुछ भी हमारे शरीर में नहीं आता है खाने पीने के लिए। तो अगर हम सुबह उठ के नाश्ता नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी नाश्ता करना चाहिए, नाश्ता अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है, जिसको चपाचपा जो प्रक्रिया होती है वो खराब हो जाती है, और उससे क्या होता है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है, वो बिगड़ने लगती है। शरीर को गलत मैसेज जाता है, शरीर में वसा इकट्ठा होने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है, वीकनेस आने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जो अर्ली न्यूट्रिएंट्स, जितनी जल्दी हम सुबह सुबह जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या को सही रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अच्छी तरह से आप नाश्ता कर लेते हैं तो अगर एक बार दोपहर में स्किप भी हो जाता है, कुछ आप नहीं भी खाते हैं तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो चूंकि रात भर की फास्टिंग होती है, रात भर खाली पेट रहते हैं और पूरा शरीर हमारा सुबह सुबह तैयार रहता है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल नया सुबह होने का मतलब शरीर हमारे नए तरीके से स्टार्ट होता है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, और कई बार लोग ब्रेकफास्ट को बहुत लेट कर देते हैं। वो लगभग लगभग दोपहर के भोजन के समय 11 बजे खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रेकफास्ट जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ब्रेकफास्ट छोड़ देने से वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। ब्रेकफास्ट करने से वेट मैनेजमेंट में आसानी होती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ना करने से वजन बढ़ता है। अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर इस हिसाब से अपने आप को तैयार करने लगता है कि हो सकता है भविष्य में भोजन ना मिले, तो वो अधिक से अधिक वसा अपने अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो अगर वजन कम करना है उसके लिए भी आवश्यक है कि ब्रेकफास्ट किया जाए, और जिन लोगों को वजन बढ़ाना है उनके लिए भी आवश्यक है कि सुबह ब्रेकफास्ट किया जाए।
0: आमतौर पर नाश्ते में क्या क्या लिया जाए सामान्यतः?
1: हाँ, नाश्ते में सबसे अच्छा तो होता है कि जो हम प्राकृतिक आहार लें। प्राकृतिक आहार का मतलब कम से कम जिसमें हम एडल्ट्रेशन कर सकते हैं, और अंकुरित जो अनाज होते हैं वो ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमारा पाचन से जो तंत्र है, या तमाम लोग ऐसे हैं तो जो ये सब चीजें नहीं खा सकते हैं, तो उनको भी ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो आसानी से पच जाएं, जैसे दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि मैदे से बनी चीजें नहीं लेनी चाहिए। अक्सर लोग ब्रेड खाते हैं तो ठीक है, लेकिन ब्रेड के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि मैदे से बनी, चूंकि ब्रेड मैदे से ही बनती है, तो ऐसी चीजें जो रिफाइंड ना हो, प्राकृतिक रूप में हमारे पास हो, हाँ वो हमें लेना चाहिए। प्राकृतिक आहार हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फल हैं, अंकुरित करके हम अनाज को खा सकते हैं, मूंग है, चना है, दलिया है, और मूंगफली है, सोयाबीन है, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो हम खा सकते हैं। तो नाश्ते में कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राकृतिक आहार है, नेचुरल जो चीजें हैं वही लेनी चाहिए।
0: तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अंबुज शुक्ला, और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि भाई नाश्ता क्यों जरूरी है और यदि हम नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की बातों को आत्मसात करेंगे और इससे लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से जुड़ा ये कार्यक्रम।
3: दरियंतेस नाजानी फनखेना सक्सेस कोल्लार देलुक से हागुरु निने पिन डॉक्टर अंबुज शुक्लेखना تسولن خان پوین من سباج خان میریم و وقتی واکاش وانی کارگیرن واقع سپیده قطع شد و خانم نرسم چه سونا سونسو کسته نهاری گاین نزد.

0: ने होर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसेत सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan was awarded the Padma Vibhushan in the category of Literature and Education, and former judge K.T. Thomas was given the Padma Vibhushan in Social Work. Former tennis player Vijay Amrit Raj, actor Mammootty, and playback singer Alka Yagnik received the Padma Bhushan Award. This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan, and 113 Padma Shri Awards. The Ministry of External

0: धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: 61 हिजरी की मुहर्रम अल हराम की 10वीं तारीख का सूरज जब चमका तो उस पर एक इरताश की कैफियत तारी थी। 10 मुहर्रम की सुबह को तुलू होने वाला सूरज अपनी ताबोतवा खो चुका था। सर तबसुरता और तमाजत से आरी आफ्ताब ने करबला के मैदान में वो देखा था जिसके देखने की ताबोतवा उसमें न थी।
1: और फिर वह हस्ती जो अशरफ तरीन और आला तरीन हस्ती थी, जिससे ज्यादा मुकद्दस, जिससे ज्यादा मुशर्रफ, जिससे ज्यादा बरतर, शरीफ व मुबारक, ज्यादा मुत्तकी व नेक, महबूब व अजीज, उस वक्त उस अहद में मौजूद न थी।
0: रसूल अल्लाह का नवासा, फातिमा का नूर अहद, हैदर करार का फर्जंद दिलपन शहीद होने वाला था।
1: शहीद होने वाला था और बेआबोदाना शहीद होने वाला था। वो नवासा जिसका नाना शहनशाह दो आलम था, जिसका बाप शेर खुदा था, जो राकिब दोश पैगंबर था, वो खाको खून में तड़पने वाला था। उसका जसद अकदस घोड़ों की टापों से पामाल किया जाने वाला था। उसके जिगर पा

0: मलाइका में एक शोर शैवन फरियाद बपा है, फर्श से लेकर अर्श तक और अर्श से लेकर ला इंतहा बुलंदियों तक हर जर्रा हर हिस्सा मुस्तरिब है, परेशान है, सरासीमा है, मबहूत है कि ये क्या होने वाला है।
1: था शश जहत में गुल्क है ये रोज़े इनकलाब, था शश जहत में गुल्क है ये रोज़े इनकलाब, उल्टेगा इस जमीन का वरक इब्ने बूतुराब, इस शेर पर न होगी कोई फौज कामयाब, बस बस बिनाए आलमे इमकान हुई।

0: हिजरी 61 के मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख, नमाज फजर अदा करके जाने बतौर नहायत ही महवियत में दुआ मांग रहे थे कि लश्करे यजीद में तबले जंग बजने लगा।
1: हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 22,000 लश्कर परे बांधे खड़ा है, और कोई होता तो इस बेपनाह फौज से मुकाबले का तसव्वुर भी न करता। मगर इमाम आली मुकाम फतह शिकस्त जिंदगी और मौत से बेखौफ होकर अपनी सब्र सबात और हक परस्ती का इम्तहान देने रेगजारे करबला में अपने 32 सवार और 40 प्यादों को लेकर फौज यजीद के सामने पहुंच गए।

अपनी मुट्ठी भर फौज को यजीदी फौज के सामने इस तरह सफारा करते हैं कि एक जगह पर जुहैर बिन कैन को मामूर करते हैं, दूसरी जगह हबीब बिन मुजाहिर की सुपुर्द करते हैं, अलमदार हजरत अब्बास मुकरर फरमाए जाते हैं और अपनी जगह कल्ब में रखते हैं।

perception प्रोग्रामन अप्रोच्चुक चाहिन। कृषि विज्ञान केन्द्र कारगिल सख्यात गेतखानला पोल्ट्री फार्मिंग पेमिंग ना ट्रेनिंग प्रोग्राम चेगे ग्रल सिरबास दिवसला प्रोग्राम पे गोजोगी तकरी विवासला अजग्यास्त्री तीस गन पाथप खान मैडम परवीन फेसपडुन फेजोस्ते का अजुक से ही उत्पिन यहां फेसपडुन फोस्कुरी खेता पे सख्यात ना तोते उत्खान गेतबाद बखानुन यरग्यास ना लसके वक्स फिंग मिफिला कृषि विज्ञान केन्द्र कारगिल चोसना लेंस खान दिजाती लक्षेप्शन फ्रलुक सुनी स्तोद्रबास दिवसला प्रोग्राम पे जिल्ले लोखसो गम्यूलुनियाना सख्याती गेतबाद बखानुनिस खागलेंस यंग रिसोर्स पर्सन पेजोस्ते का खागलेंस खान पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर लैला दुना खसपा डॉक्टर फेरोज दीनी खिताब उनिस खागलेंस खान उनला दी प्रोग्राम पे तो उनिस को लसल पो बसे अहा गोन तांस खुरी खिताब पे डॉक्टर इस गम्यूले मीमांस उनी यर्गियास ना यंखे उलस के तामिमीना पोल्ट्री फार्मिंग पे खाग इसको लजरें महकमे लोखसोसी की मुन इसको लहागों तांसे इन दियाबरें डॉक्टर फेरोज दीन इस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट पे इसको लजरें दी प्रोजेक्ट पे कना सख्यात गेतबाद बखान उनला युत पे इसको लंग खाग लेन खान उनला हागों तांस लजचुक पे का प्रोग्राम पे खाग लेन खान उन इसके वी के करगिल्ला और शूजरें यूं मिजागों सगान उगां दियाना जाती प्रोग्राम उन नस्त्रूल वर्गो सुखसरे शुवा बस गाविका केवी के कारगिलिस ग्रल सिर्बे मीना अरन लुक्स बसेन पुर्गी खबर हुला यंतेस आकाशवाणी कारगिल के नस ना बेंचियोत हिस एमिनेंस सेकंड रुकपा ठुकचे रिनपोचेस कुर्बाथंग कारगिल्ला कारगिल गोनपेस म्यारदो अवजक्स दिवसला लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन सदर सिरिंग दुर्जे मेंबर पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी लद्दाख हाजी मोहम्मद हनीफा जान एग्जीक्यूटिव काउंसलर पुंचोक टशी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से हाजी असगर अली करबलाई ने सज्जाद कारगिली दुनाए लोखसो खा खुरुन सक अशुक से इक्योत बिन दियाबरियां लद्दाख बुद्धिस एसोसिएशन इच्छोस ने दीगोन पा और सिक बिफिला सतांच समीना रोक्स बिफिला हिल काउंसल कारगिल ने एडोनर उनला और यूजेस नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गलचक पुनजम से खो छेसलुक से बल्टन उन प्रोचुक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुक नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर मुखर्जी मिंग भी उनसे सिखस पे नंगेंबो नंगेंबो शख्सित मीनस रनखन लीडर चिगिन मिंजरांग असे रेन दियाबरें वजीर आजम नरेंद्र मोदी संग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुरी छेसलुक से बल्टन उन प्रोचुगन सोशल मीडिया पोस्ट के का छेमेत इस खुरी छेगांपुस गेस्ट्री थी यर्गिया से मीनस प्रालस्खन इन मिंजरे असर बसों नारमय मरकजी वजीर अमित शाह नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया शोखना अजग्यास्त्री तिंगिमर सख्यात गेतखन लाख अर्दुनचुन एजपी अरुख बेंच की होते हैं जरह सरसत दिसपरान खोंस नई दिल्ली अटल अक्षय ऊर्जा भवन ला नफे एक्शन पोर्टल नफे डॉट इन पुला गोजुक बेवक्सला असर बसों जिनाब शाह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खोई गलजक पुनजम से खुरी छेसलुक से बल्टन उन फ्रोचुगेन दफा 370 पुथेंचाज बसे समेत इंगिला मुन घारिया सोंसिन जरे सरसत प्रोग्राम पुनगरागन सख्यत न सख्यत गेत खानुनी फंथोक वजीर शिवराज सिंह चौहान इस वजीर अजम मोदी गोयतियां जियास्री तिफ्योक्स गामी अनुक यर्गिया सिलोंपियां शोक्स नयं बो दुनला बिंग इंचिक अहियोत इन जरे इसरीन भारत इस अमेरिका ने ईरान इबारियां छकन छत छमजदे का फेफसूस बसे नई दिल्ली ब्रिक्स यूलोनिस गैस्ट्रीटी स्ट्रोनलुक से मुशीर उन्हें चुजरू गिरेसी ग्राफ्स पुनाक्रगेन आज गैस्ट्रीटी स्ट्रोनलुक से सलाहकार अजीत ढोबालिस दी छमजूस बसे म्यूल घं प्यानुक क्योंकि सप्लाई पर क्यों चंचा चाइनज़र है सरसेट कहाँ जाएं अपना ये हॉर्मोन्स पर फेचा सियांग फेब्सुस बेंची के दिए उस बसे सप्लाई पुला फोकन नज़दोखर पु मित पसों से कुमाई चला उन्हें कौन कौन पैकरा शख्सित छचा इंजर हैं असर बसों एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस असातिजान चुप्पी भर्ती इम्तिहान उन्नीस को लछखन लसखन इसमापियाँ चेन्नई तिरुचरापल्ली दुना कोयम्बटूर न मदुराई है मलसा चौपिया दिखा छापा तांस डायरेक्टोरेट इस मरकजी क्राइम ब्रांच पे छोस न सनालोस थोंगिस न चुप दुनिया अनुक तांसखन FIR पे इसमें आपेगा दी कार्रवाई उम्मली अनुक क्यों सेन अयोध्या राम मंदिर प्यांग मीमांस निछोसना तांसखन फलोक मोलोक पेस नियति अनुको चलचल बखन फेसपा चलचल टीम पुस उत्तर प्रदेश सरकार लखुरी कुमार रिपोर्ट पुस्ता तेन लखनऊ डिवीजनी कमिश्नर विजय विश्वास 35 नाशमय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद ला दी रिपोर्ट पुतंग मसों यंग खखुर नि चलचल पु दरा उंडुलिंच गियो तेन जरेन थेबा सबूत नसक लगे नुख्यो मिमिना अजदु मेंचिक गियो तेन जरे असर सत्र तस्वीर मीना जरना उत्तर

0: आदाब।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों के बुलेटिन के साथ मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया के हाथों दूसरे मरहले के तहत 2026 के पदम एजाजात तफवीज। अवार्ड याफ्तगान में जम्मू कश्मीर के ब्रिजलाल भट्ट भी शामिल। वजीर आजम ने अफसरों को अपनी ताजा दम सोच और जोश खरोश से विकसित भारत 2047 का ख्वाब पूरा करने में अपना रोल अदा करने की दी सलाह। कौमी ई खिदमत की फराहमी में जम्मू कश्मीर अव्वल नंबर पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने SKICC में सेवा से समृद्धि वर्कशॉप से किया खिताब। और राबिता प्रोजेक्टों की पूरे मियार के साथ बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर वजीर आला का जोर। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दूसरे मरहले के तहत साल 2026 के पदम एजाजात तफवीज किए। आज की तकरीब में मजमू तौर पर 65 पदम एजाजात तकसीम किए गए, जिनमें 2 पदम विभूषण, 7 पदम भूषण और 56 पदमश्री एजाजात शामिल हैं। दूसरे मरहले में ये अवार्ड पाने वालों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ब्रिजलाल भट्ट भी शामिल हैं, जिन्हें ये अवार्ड सामाजिक खिदमत की अंजामदेही के सिले में दिया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने पदम एजाजात हासिल करने वाले सभी मुअज्जज शख्सियात को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अपने अपने शोबों में बेहतर से बेहतर काम जारी रखने की सलाह दी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें एक नामवर माहिर तालीम, मुजाहिद आजादी और दूर अंदेश रहनुमा करार दिया है। PM ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी हमारी इज्तिमाई यादाश्त में महफूज है और हम उनके ख्वाबों का भारत तामीर करने के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि दफा 370 की मनसूखी से उनके नजरिए की तकमील हुई है। नई दिल्ली में अनजानी की बरसी के ताल्लुक से मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुल्क के इतिहाद और सालमियत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। इधर प्रदेश BJP की तरफ से भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की खिदमत को याद करते हुए

0: शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। इस सिलसिले में टाइगोर हॉल श्रीनगर में मुनाकिदा एक तकरीब पर प्रदेश बीजेपी सदर सत शर्मा, कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशां अंद्राबी ने आनजानी को शानदार खराज अकीदत अदा किया। आनजानी के बलिदान दिवस के सिलसिले में बीजेपी की तरफ से जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में कई मकामात पर प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफसरों पर जोर दिया है कि वो अपनी ताजा दम सोच और जोश खरोश से विकसित भारत 2047 के ख्वाब को पूरा करने में अपना किरदार अदा करें। आज 2024 बैच के 183 जेर तरबियत IAS अफसरों के साथ मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने इन अफसरों पर जोर दिया कि वो अपने आप को कौम की तामीर के लिए वक्फ करते हुए इख्तरा और लोगों पर मरकूज गवर्नेंस के हुकूमत के नजरिए को तकवियत बख्शें। हुक्मरानी में डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के रोल को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान भारत में गवर्नेंस निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां हुई हैं। इन अफसरों ने फील्ड ट्रेनिंग और मुख्तलिफ वज़ारतों के साथ मुंसलिक रहने से मुतालिक अपने तजुर्बात बयान किए। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाई मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मशीरों के 16वें इजलास से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मशीर अजीत दवाल ने आबनाए हरमुज के खुलने का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे सप्लाई चेन में हायल रुकावटें दूर होंगी।
1: India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of say, fertilizers and chemicals etc. will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity.
0: इसी दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में हुए मुजाकरात के बाद खाम तेल की आलमी कीमतों में आज नुमाया कमी देखी गई। रसद में मुमकिन रुकावटों के खदशात कम होने और ईरान से तेल की बरामदात में इजाफे की उम्मीद पैदा होने के बायस खाम तेल की कीमतें 3% तक गिर गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस का निजाम गुजश्ता चंद बरसों के दौरान इंकलाबी तब्दीलियों से गुजरा है। SKICC श्रीनगर में पंचायती राज वजारत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से मुनाकिदा वर्कशॉप सेवा से समृद्धि से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि साल 2020 में महज 35 खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब थी जबकि 2023 में इनकी तादाद 1100 तक पहुंच गई और इस तरह से जम्मू कश्मीर ने नेशनल ई सर्विस डिलीवरी रैंकिंग में पहला नंबर हासिल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ब्लॉक दिवस और बैक टू विलेज जैसी मुहिमात से इंतजामिया आम लोगों की दहलीज पर पहुंच गई।
2: इस तरह बुनियादी ढांचा पंचायतों तक पहुंचे, धीरे धीरे वो प्रगति आगे बढ़ी और मैं कह सकता हूं कि नागरिक सेवाएं हो या सामाजिक कल्याण से संबंधित कोई विषय हो, टेक्नोलॉजी के उपयोग से जिस प्रभावी ढंग से वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि शायद दूसरी कोई व्यवस्था उतनी कारगर नहीं होगी। 3 वर्ष में मुझे याद है 1100 से ज्यादा सेवाएं यहाँ लोगों को मिलने लगी थी और अनेक बड़े राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। ई सर्विस डिलीवरी की रैंकिंग में नंबर 1 जम्मू कश्मीर हो गया मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जिससे आम आदमी को सहूलियत हो सके, उसकी सुनवाई हो सके।
0: इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज श्रीनगर में एक आला सतह मीटिंग के दौरान मुहर्रम तकरीबात के अलावा श्री अमरनाथ जी यात्रा के एहसन इनाकात के सिलसिले में तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने आवाम के लिए इन तकरीबात के पेश नजर तमाम जरूरी सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने के अलावा अमन कानून की सूरत हाल बनाए रखने पर जोर दिया। मनोज सिन्हा ने दोनों मजहबी तकरीबात के सिलसिले में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक जामिया लायमल इख्तियार करने की भी ताकीद की और तमाम मुतलका महकमों के दरमियान करीबी तालमेल की जरूरत उजागर की। खारजी उमूर से मुतलक रुकन पार्लियामान शशि थरूर की सरबराही वाली पार्लियामानी कायम कमेटी सरहदी सलामती और खारजा पॉलिसी से मुतालिक अहम उमूर का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं। ये कमेटी 25 जून तक श्रीनगर, जम्मू, करगिल और लद्दाख का दौरा करेगी ताकि इन खित्तों में सरहदी इंतजाम और सलामती सूरत हाल का बरसर मौका जायजा लिया जा सके। ये कमेटी भारत के दो तरफा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त, सिंध तास आबी मुहदे की मअतली और हदी मुतारका नीज बैन अल अक्वामी सरहद के मुतसिल सरहद पार

0: पहले एक बेटी थी, वो भी तकरीबन 40 डेज इधर हॉस्पिटल में रही है, उसको भी यही HLH था, उसकी डेथ हो गई है क्योंकि उस टाइम इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं था इसका। तो जब ये दूसरा बच्चा मेरा आया तो ये तकरीबन 12 मंथ्स ठीक था, 12 मंथ्स के बाद मैंने इसका टेस्ट करवाया तो ये भी HLH निकला। फिर मैं बाहर भी गया, हर जगह गया मैं। उसके बाद मैंने रेशमा मैम का नाम सुना है इधर कि वो इसके लिए बहुत काबिल जानी जाती है, तो फिर मैं इनके पास आया। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो पोलैंड का जो डोनर है उसका भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आज तो बच्चा ठीक हो गया है।
1: आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से वाबस्ता एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव सुहेल अहमद भट्ट के वालिद नस्बती शेख अब्दुल मजीद आज दोपहर इंतकाल कर गए। वो वादी के मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शेख तारिक के वालिद थे। शोबे खबर के सरबरा अशफाक अहमद शाह की सदारत में आज एक ताजियती मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें सुहेल अहमद भट्ट के साथ ताजियत का इजहार करते हुए मरहूम की जन्नत निशीनी के लिए दुआ की गई। लावाकीन के मुताबिक ताजियत 3 दिन यानी 25 जून तक उनकी रिहायशगाह वाका हमजा कॉलोनी लेन नंबर 3 लाल बाजार श्रीनगर में जारी रहेगी। इज्तिमाई फातेहखानी जुमेरात 25 जून को सुबह 9:30 बजे उनके आबाई मकबरे पर अंजाम दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आवाम की बेलोस खदमत जारी रखेगी। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की आवाम दोस्त हुक्मरानी से हमारे मुखालफीन बौखलाहट का शिकार हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने रवा साल के दौरान एक अहम संग मील तय किया है जहां 22 जून तक माता के दर्शन पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद ने 50 लाख का हिस्सा पार कर लिया। इस सिलसिले में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से जारी करदा रिलीज के मुताबिक आज तक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वालों की असल तादाद 50,70,000 तक पहुंच गई है। खान साहब बड़गाम में सैयद सालेह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोजा उर्स आज इख्ताम पजीर हुआ। उर्स के आखिरी रोज हजारों अकीदतमंदों ने उनकी दरगाह पर हाजिरी देकर दुरूद अजकार और खतमातुल मौजमात की मजालिस में हिस्सा लिया। वुलर कल्चरल फोरम की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मधुबन में आज एक महफिल मुशायरा का इनेकाद हुआ। मुशायरे में इलाके के दर्जनों शोरा ने शिरकत करके सामईन को अपने कलाम से महजूज किया। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी है। मनशियात के खिलाफ LG का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक सीनियर लेक्चरर गुलजार अहमद राथर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: मैं नौजवानों से मोदीवाना गुजारिश है कि वो इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, इन चीजों से आप परहेज करें। साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे जो एंड कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट है जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी पुलिसिंग से और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इंटरवेंशन से, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके इंटरवेंशन से जब हम मिल करेंगे तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह हम इससे निजात पा ही लेंगे।
1: आखिर पर मौसम, महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:21 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
4: समईन आदाब, आज का तबसरा लिए मैं शबीर उज़्ज़मा। ईरान और अमरीका के दरमियान स्विट्जरलैंड में हालिया जंगबंदी के बाद कतर और पाकिस्तान की सालसी में बातचीत का पहला दौर खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुआ है। भारत समेत आलमी मईशत और आलमी अमन के लिए बातचीत का ये दौर उम्मीद अफजा रहा है। इससे पहले दोनों मुल्कों ने तवील सिफारतकारी के बाद, जिसमें सालसों का कलीदी रोल रहा 107 रोजा जंग के खात्मे के लिए मफाहमत की एक यादाश्त पर पिछले हफ्ते दस्तखत किए थे। मफाहमत की इस यादाश्त में जंग खत्म करने और 60 दिनों में मुजाकरात के जरिए बाहमी मसाइल का सिफारती हल ढूंढने पर इत्तेफाक किया गया था। ये बात सभी जानते हैं कि फरवरी में अमरीका और इसराइल के ईरान पर फजाई हमले शुरू किए जाने से

0: खित्ते में जबरदस्त जंग छिड़ गई थी और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों से इस अहम खित्ते में तश्वीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसी खित्ते में आप नए हरमुज से दुनिया के 20% तेल और गैस की नकलो हमल होती है और ये नकलो हमल मजदूर हो जाने से पूरी दुनिया में माशी बुहरान पैदा होने लगा था और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही थी। इब्तदाई समझौते में हर महाज पर मुकम्मल जंग बंदी, आबनाए हरमुज को बहरी नकल हमल के लिए फौरी तौर पर खोले जाने और ईरान पर अमेरिका की तरफ से आयद बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही ये भी तय पाया है कि 60 दिनों के अंदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम, ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां हटाने और ईरान के मुंजमद असासे वागुजार करने जैसे मामलात पर हतमी मुआहिदा करने के लिए बातचीत होगी। फरीकैन में बातचीत के पहले दौर से कबल ही इसराइल की तरफ से जुनूबी लिबनान में खून रेज फौजी कार्रवाइयों पर मनाकशा खड़ा हुआ और इस कशीदगी की वजह से स्विट्जरलैंड में बातचीत के इस पहले दौर के इनेकाद में अड़चने पैदा हो गई थीं। अब जबकि बातचीत का ये दौर न सिर्फ मुनक्किद हुआ है बल्कि मुसबत अंदाज से आइंदा मुजाकरात के लिए नक्शराह तैयार करके मुकम्मल हुआ है, फरीकैन के दरमियान हतमी मुआहदे की उम्मीद बढ़ गई है। बातचीत के पहले दौर के बाद अब आबनाए हरमुज जहाजरानी के लिए खुल गई है और अमरीका ने ईरान की तेल की बरामदात पर पाबंदियां 60 दिनों के लिए हटाई है। ये दोनों बातें खित्ते और आलमी मईशत के लिए मुसबत हैं। ताहम मुजाकरात के आगे बढ़ने के ताल्लुक से लिबनान की सूरत हाल पर सबकी नजर रहेगी। देखना ये होगा कि अमरीका इसराइल को लिबनान में फौजी कार्रवाइयां रोकने के सिलसिले में किस कदर मुअसर साबित होता है। दूसरा अहम नुक्ता ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुस्तकबिल है। मुजाकरात के पहले दौर में अमरीकी वफद की कयादत करने वाले नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि इन मुजाकरात में आइंदा बातचीत के लिए ठोस बुनियाद रखी गई है। एक अहम पेशरफ्त में स्विट्जरलैंड मुजाकरात से पहले ईरानी वफद की वतन वापसी के फौरन बाद ईरान के सदर का आज इस्लामाबाद का दौरा हुआ। यूं सालसी का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के साथ ईरान की आला सतह पर बातचीत जारी रहेगी। ख्याल किया जाता है कि लिबनान में जंगबंदी और ईरान की तरफ यूरेनियम की अफजूदगी इस बातचीत के भी कलीदी जूज रहेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत और सिफारतकारी का ये सिलसिला कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी बदौलत खित्ते में देरपा अमन और तरक्की की राह हमवार होगी। भारत समेत दुनिया भर के माशी इस्तेहकाम के लिए ऐसा होना बायस इत्मीनान होगा और इससे पूरी दुनिया की आबादी को राहत नसीब होगी। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस।
2: درینتس آکاشوانی سری نگر نہ اردیاں خبروں نہ تبصرہ لینگین چوت بن میڈیم ویو کا دیو آکاشوانی کرگلین واس بوت سنی تو سوتر گیت سنسک کستا محرم الحرامی ارگیتی سنی کا فیس پا پروگرام چنگین نظر سرطان سے پروچو کھن پوین محمد حسن اسکری
3: آکاشوانی کرگل میڈیم ویو کا محرم الحرامی فیس پا مجلس نا بخن انہی ختم اللہ السلام علیکم यल प्रोग्राम साबखन शर्मा चुनसे का गफोन अशिरमोन दिरिंग छन पो महरम उल हरामी रियाति छन इन मानजुम से शाहजादा अली असगर अलैहि सलातु व सलामी शहादत इस्कोला फैसवा मजलिस के ते खिदमत ल फ्रोच चुकाइन दी मजलिस फैन सक पतिस्तान ला हाजी मोहम्मद हसन इरफानी कना मार्सिक वास बोलखन पोइन हुज्जत अल इस्लाम जनाब शेख अब्दुल रहमान माजानी हरदासी फेको ले अपोचो मुस्तफाई दुनसरी यसबी खबू या खबुआ यसलुंग ममिन मा चत पसुला फोतलेबु यंग स्टोरे दुनियात पठुप सोंग ले जिजी शर्बी निमा रद्यांग ब्रखसे उता दिरिंग ना यरे जिजी ला छोतलेबु दि फेसवा मजलिस पंती खतबा लफ्रो चुगेत।

0: ርእንተስ ኖሃሪገኛ ንንቹት ፒን ሚዲየም ዌቭ ገዲው አካሽዋኒ ፍርክሊን
1: पापा ये सब
2: हाँ जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
1: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी।
3: अरे ये कैसे रह गया?
1: पैसे गए?
3: नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है।
2: बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है।
3: ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
4: दादू ये
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सही कह रहा है।
0: ميديم ويو سنتين غبجانا نشوش بي نجبي كيلو هرس ميديم ويو تركيانا نشوش بي نجبي كيلو هرس دونا اف ام ارجع عشر ياتشيك ميجا هرس يان موبايل اب نيوز اون ايا ايريكا ديو اكاشواني كرگلين وقص بو خبرين اشندو كستا اكاشواني دلين هندي انگريزي دون ارديان خبرين ريليبت ريليولا دان بازت
7: نمسكار اكاشواني سي سماچار سندھیا کے ساتھ میں پریانکا اروڑا मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से

0: निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूरी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66

0: ऐसे हैं जो घायल हुए हैं वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
0: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
0: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के

0: आकाशवाणी खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एनिनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हॉस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के IAS के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और प्लेबैक्स गुलूकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबु सोरेन को बादअज़मर पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक CEO शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादअज़मर पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।

0: मजबूत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत नैनो की वजह से कमजोर मानसून के इम्कान असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीकेकार फसलों की बरवक्त मनसूबाबंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताजा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तिजारत पर जोर देते हुए आलमी तिजारत में भारत के रोल का तजिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं। एनटीए के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाबा बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर अबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। सियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताजा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुज़

उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचम बरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अब नाए हुरमुज में पहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयत पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क्यादत ने जारी सिफारती मुजाकरात में अहम रियायतें दी हैं, जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाजे किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवाना एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई क्योंकि खित्ते में तेज बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थी। आईएमडी के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आईएमडी ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 गोल से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला यह मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। आज फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में हॉस्टन में रात 10:30 पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बोस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 टोरंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सूल में जारी आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए, जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवा नरवार ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता, जबकि युग प्रताप सिंह राठौर ने भी इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात की निकास से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज

0: इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दरिया तेज आकाशवाणी दिल्ली ना हिंदी अंग्रेजी दोनों उर्दियां खबर लंगे चुत पिन मीडियम वेव कदि आकाशवाणी करगिरिन वस्पसाने तो सत्र गुना फेस संसुक कसता शिना प्रोग्राम इन नजत पुनर प्रोग्राम अंसर तंगन पॉइंट गुलजार हुसैन दन प्रोग्राम प्रचुखन पॉइंट मुदस्सिर हुसैन।

0: leadership over the leadership over the
1: ode nafis bo bete
0: ode nafis bo bete ni
1: bilkul bilkul
0: ta ani sabit the ni ki mulae
1: kanuga meydan e patunish terazi bilkul
0: musho kanuga meydan jab musho jo kamnush
1: bilkul
0: jaise ki doctor engineer teacher scientist pilot ga business leader firi mulae khidmat qabil e tareef hani
1: bilkul anwar bhai tu jo kanje rate musu ke jan tu thor razi ga ki mulae har shobe jab balo e patino munish te tum asani hindustan hi asuri ta kes to hindustan e jaise atae azim shakhsiyat mulae ani jaise aso jab lel hani kalpana chawla chhu se science ga space so maidan e jab bad nom de suri suno roshan thi jaise alao kiran bedi aso ji pata hi bharat hindustan asani bharat to budu jo pumu ki mulae asiri se so IPS officer go to ani re darar cham thi ki bal ga mulae farak hote aag se so thi se se alawa Mary Kom yani hindustan budu champion boxing boxer aaj ga suni hai hindustan e kachak world title re so jeet bo gi PV Sindhu suni agar bade misale ki nis to se so olympic se kachak medal ki nini acha jo narandala asani muchore meju ki Prime Minister Indira Gandhi se hensni Hindustan buru jo pumugi mulay asli Prime Minister bilek to a tamam anya bade bade shakhsiyat ga sachi gani asni Hindustan ja ki duniya numaya role ada the gayi ki bahar ga mulay farak jo khun se jaso duniya cham the ge first tari ga le se alawa bada jo Anwar bhai mega asne medieval Hindustan dora ne matlab ki मैं जो हिस्ट्री जगह अता है बड़े बड़े औरतें का चाक रे आए नहीं सुनेगा अनु रोल लाओ शतु रनों का हिंदुस्तान हिस्ट्री जा तो खुशुस जैसे मुझे पता ही जांसी और रानी असली
0: राजा सुल्तान असली
1: से अलावा राजा सुल्तान असली तो बड़ा लाओ खदमात हैं जो मुलायो से अलावा बड़ा जैसे रजीमों जो असने कुड़ने से जरूर है
0: सैनी मेहनत का लगन मुआशरे बेहतर थोनी एक अहम किरदार अदा थानी असनी अनिसो बावजूद दुनिया तो लाओ हिस्सो जब मुलाय और मुख्तलिफ मसाइल सामने बेना लाए जगो जब मुलाय और तालीम बराबर मौके ले जनुश
1: बिल्कुल
0: ठीक मुलाय और घरेलू तशद्दुद जैसे इंग्लिश इतना डोमेस्टिक वायलेंस जो कुटे न गोर मुलाय और ट्रिक से सबक रजो देनुश बाल का मुलाय जब फर्क लाए थे ना जिंसी हरसमन चेको जिंसी हरसमन का मुआशी ना इंसाफियो सामना थे नहीं
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: तमाम मसाइल से मुलाय तरक्की चा रुकावट अन्य मसाइल बुढ़े जो असुए रजी गैस की डोमेस्टिक वायलेंस बेनी तशद्दुद बेनी जिंसी हरसानी बेनी मुलाय खिलाफ ना इंसाफी बेनी अन्य बुढ़े से मतलब मुलाय तरक्की थोनी लाए बड़ी रुकावट बेनी अन्य बुढ़ी
1: बिल्कुल अनवर भाई थो रजी का उसमें सुन अगर ऐसे असनो माशरे टकेस तो जैसे मलाई शाह के मुझे दुख रजी का कि मुला घरेलू क्रो मुझे रटे छोड़ना जैसे मैं जो सने गांव मुझे टकेस तो उठते फिर थे करगिल टाउन है जो कुछ फिलहाल करगिलो मुश्तेस तो करगिलो टाउन है मुला ऐसे हर शोबे कोशिश तो नहीं चाहे तालीमी मैदान बोनी चाहे खेल कूद बोनी क्या वो जैसे कोशिश थे बुझी मगम असोई अगर ट्रकेस और तो पेड़ थे गामो या दूर अलग कोई ट्रकेस तो सद मुलायक को तेरे पतो सचिंग के जो हम तो गोड़ बच्चे से का लाये तो आज दिन जैसे गोर क्रम ही जनों रस गुन्ना की मुलायो क्रम ही आई बिल की से गोर भी तो टी के का बाई थोड़ी ही जनों मकसद भी लेकिन ना तो असनो दीन है जगह निश कनुगा दीन है निश कि मुलाई सिर्फ क्रम थोड़ी ही कार्य
0: भी एग्जांपल हनी हजरत खदीजा जैसे तिजारत थे दी और प्रॉफिट मोमा साहब सुन नला नला से नला तिजारत थे लाई बड़ी एग्जांपल एक जैसे फातिमा जहरा का एग्जांपल एक लाई पड़ी लिखी है जैसे का जैसे हजरत जैनब का एग्जांपल है सो दी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: यानी एग्जांपल ही बड़ी ट्रके में सो असने मुला और का मुठो बोजो ने हिम्मत दोनों जी सबक रजुनो जी सेनी बाल फर्स्ट सेनी खदमत थोनो जी सो दी का
1: बिल्कुल तो बिल्कुल अजीम शख्सियत और नो मित्र मिसाल तो देगा जैसे हजरत कुबरा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा सन पहला मुलाय असली की तिजारत थेली बिजनेस वन असली पूरा वही कचाक इंडिपेंडेंस असली कचाक ससरे रेद असली की ससे पूरा कंट्रोल थेली बिजनेस इस कचाक का असली तिजारत